0: सम्झ गए नहीं कुछ यहाँ को कुछ समझा नहीं
1: चुप है सामने फास्ट है नहीं